म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलौती र पुत्र गुल माली कहाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजुभाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।